0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9896-800-51।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

पाकिस्तान अमरीका सां ईरान जे एटमी प्रोग्राम बाबति मालूमात शेयर करण वारे रिपोर्टनि खे रद्द करे छॾियो। परडे॒ही आफ़ीस जे तर्जुमान चयो आहे पाकिस्तान अमरीका सां ईरान जे एटमी प्रोग्राम बाबति का बि मालूमात शेयर न कई आहे। अहिड़ियूं रिपोर्टूं बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ ऐं हक़ीक़तनि जो उबतण आहिनि। इसाकदार ऐं अमरीकी परडे॒ही विच में 29 मई ते थियल मुलाक़ातुनि दौरान का इंटेलिजेंस शेयरिंग नाहे कई वई। पाकिस्तान जी परडे॒ही पॉलिसी असूली मौक़िफ़ इलाक़ाई सिहाम ऐं गडि॒यल एतराम ते ॿधल आहे।

0: वजीर आजम शहबाज शरीफ चवा है अमरीकी सदर ट्रंप के वक्तायती मुदाखिल से पाकिस्तान भारत विच में जंगबंदी मुमकिन थी। सदर ट्रंप के हमेशा अमन के दावेदार तौर याद रखो वेंदो। पाकिस्तान अमरीका ईरान विच में सालस जो मुखलस किरदार अदा कर रो है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर अमन इस्तकाम की कोशिशों के अगते बढ़ा रो है। एतमाद के इजहार से ईरान ए अमरीका शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीका के 250 सालगिरह तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ए अमरीकी अवाम के आजादी दिहाड़े की मुबारकबाद। वजीर आजम अमरीका जो 80 वड़ी कंपनियों पाकिस्तान में कम कर रही हैं। 10 लख पाकिस्तानी जावा अमरीकी शहरी बिन्हीं मुल्क विच में।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-3883-8569।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

नथो सम्झां त पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि।

0: फैज़गंज वेझो घोट अलाजड़ियो शहर में कारे इल्ज़ाम हेठ भाव हथां भेण कतल। जवाबदार अली रज़ा शर कुहाड़ीअ जा वार करे टिन ॿारनि जी माउ सुगरा खे कतल कयो। जवाबदार फरार। न्यू सैदाबाद में क़ौमी शाहराह जे होटल तां नामालूम लाश हथ, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस फ़ौज लाश जी सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। राधन ग्रिल स्टेशन जे चौथे ॾींहुं बि बिजली बहाल न थी सघी। अंगारे ॾींहं खां बंदि थियल बिजली जी फरहमी बहाल न थियण सबब समय ॻोठनि जी बिजली बंदि पयल। ग्रिड स्टेशन खे बिजली जी फरहमी मोकिल करण सबब राधन थड़ी मोहबत नओ घोट शाह पंजू समेत ॿिनि समय ॻोठनि बिजली खां महरूम। मुसलसल बिजली बंदि आहे जंहिं सबब वरी अंग में इलाइक़ेवासी सख़्त अज़ाब भोगे रहिया आहिनि। सख़्त गर्मी सबब चार ॾींहनि खां बिजली बंदि पयल आहे। रहवासियुनि जूं तकलीफ़ूं वधी वियूं। सिंधड़ी में घरोर शाख जे पुछड़ीअ ताईं पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगरनि जो एहतजाज। खेपरो मीरपुर ख़ास रोड ते धरणो खयो वियो। आबादगरनि जो आपाशी अमले ते मुंड जे आबादगरनि खे पाणी वेकिरो करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोके घरोर शाख जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं
2: बाक़ी। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601100।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़र रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

तव्हांजा मैसेज ईंदा त असां उनखे पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंहं बि बणाए वठंदासीं। त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं जीअं FM नेटवर्क तां ऑन एयर कयो वेंदो आहे, जंहिंमें असां सां गॾु मिठा माण्हू हूंदा आहिनि, लाड़काणे जा, सखर जा, मीरपुर ख़ासि जा, मोरो जा, ऐं उन खां अलावा हूंदा आहिनि मेहरापुर, मटियारी, मातली ऐं सकरण जा। त सकरण जा दोस्त बि शामिलु थींदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में, अहिड़े तरीक़े सां मोरो वारा दोस्त बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहिनि। त कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ बि हलंदासीं। उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं निखन दास जो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, जेको मुंहिंजो त पसंदीदा आहे, बल्कि अव्हांजो बि उहो पसंदीदा ई सॉन्ग हूंदो। त अहमद ख़ान खोसो पाण खे ॿुधी रहियो आहे मोरो शहर जे, शायदि अदा जन लिखियो आहे, हा ठीकु आहे, दादू रोड खां। ऐं अदा अहमद ख़ान पहिरियों दफ़ो असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो आहे, महिरबानी अदा अहमद, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान अव्हांजा। तव्हां असांजो शो ॿुधी रहियो आहियो ऐं शो खे पसंदि करे रहियो, अदा जन फरमाइश कयो त असांखे मुमताज़ मौलाई जे आवाज़ में को सॉन्ग ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा अथई ॻोठु ॿाड़ो खान लाशारीअ खां ग़ुलाम नबी लाशारी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, हुन सां गॾु मोहम्मद आचार लाशारी आहे, ऐं उहो चवे थो अस्सलामु अलैकुम अदा गुलाब। त वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा साईं, कहिड़ा हाल नवां जा, ठीकु कयो त सही आहे अव्हां जी, ऐं अदा जन दुआ करे रहिया आहिनि, ऐं उन सां गॾु आहे हाजी नकी ज़रदारीअ खे बि सलाम चई रहिया आहिनि, ऐं चवनि पिया त जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनी खे सलाम चइजो। ऐं मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में फरमाइश कई अथनि त हाज़िर प्यारा मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में बि तव्हांखे कलाम ॿुधाईंदासीं। तव्हां प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिलु थिया आहियो, तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि, तव्हांजा कुर्ब आहिनि, तव्हांजो प्यारु आहे ॻोठु। मोहम्मद याकूब संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, अदा जन बि असांजे हर शो में शामिलु थींदा आहिनि। अदा हारून कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा, ठीकु कयो त बि सही आहे, तव्हांजी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो, हुनजे लाइ खोड़ सारियूं मुहबतूं, खोड़ सारो प्यारु अव्हांजे लाइ। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिलु थी सघो था। ऐं अॼोके जेको प्रोग्राम आहे उन में सिर्फ़ु मोरो जा मैसेज अची रहिया आहिनि, ॿियनि दोस्तनि जा मैसेज न आहिनि पहुता, त लॻे थो मोरो वारा सुजाग आहिनि, बाक़ी ॿिया अञा थोरी निंड में सता पिया आहिनि। बाबा गर्मी लॻी पई आहे तमामु घणी, निंड मां जाॻो। ऐं ॿी अञा तव्हांखे ॿी हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि मां ॿुधाईंदो हलां त ईंदड़ हफ़्ते खां वठी अञा वधीक तेज़ गर्मी थींदी, ऐं ईंदड़ हफ़्ते में जेको असां शो कंदासीं न उहो शो तेज़ गर्मियुनि में हूंदो।

निकंदा जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अव्हां जो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मीठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। पर ज़रिए एसएमएस करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जी राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888। दोस्तनि मैसेजेस बि आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं था। असांजो प्यारो भाउ आहे आई अब्दुल रहीम फ्राम सखर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा अब्दुल रहीम, कहिड़ा हाल नवां जा? ठीकु आहियो, त बि सही आहे। तव्हांजो उमेद तरफ़ करे तव्हां ॾे बि ख़ैरियत कई हूंदी। अदा जन लिखंदा, अस्सलामु अलैकुम प्यारा अदा। त वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा प्यारा अदा। अदा जन चवंदा, कैसे हैं आप? सलामत हुजो हमेशह। शो सुठो आहे अदा, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। ऐं मां बि दुआ गो आहियां त अलाह ताला तव्हां ॾांहुं बि ख़ैरियत करे, अवां बि सलामत हुजो, सदा आबाद हुजो। अदा जन चवनि था, शो सुठो आहे त बिल्कुलु तव्हांजी पसंदीदा शइ आहे, ऐं जेका शइ तव्हांखे पसंदि हूंदी उहा सुठी हूंदी आहे। अदा जन चवनि था त असांखे अहमद मुग़ल जो कलाम ॿुधायो, अवां त दिलि तां छॾियो विसारे। यार कलाम ॾाढो ज़बरदस्तु आहे। ऐं अदा अब्दुल रहीम, ब्रेक जो टाइम थियण वारो आहे, ब्रेक जे टाइम ते हलंदासीं। ब्रेक जे टाइम खां पोइ वापसि अची करे वाइ दुआ तव्हां सां, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो इहो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। हयाती रही त वक़्तु आहे ब्रेक जो, हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वापसि अची करे शामिलु कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मिठा मिठा प्यारा प्यारा मैसेजेस।

0: नंबर 0301-386-5453।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

प्रोग्राम में कुछ दोस्तों ने मैसेजेस भी शामिल कर हलूँ गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो का मोहम्मद हारून संदीलो पंज प्रोग्राम बुधे पे उन गड है अब्दुल हमीद संदीलो चवंदा आदा आबदा प्रवीन का सॉन्ग सुनाओ तो हाजिर मुझा मिठा सही आबदा प्रवीन जो छो न कलाम बुधाईंदी आबदा प्रवीन बेहतरीन सिद्ध की रागी है जरूर तक उन सॉन्ग बुधाईंदुम शहर कमरदीन का शमन अली सोलंगी पे प्रोग्राम बुधे पे उन एहतशाम समी समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी चवन था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है फरमाइश शमन अली मिराली के कलाम की कई अथन मेहरबानी मुझे मिठा सही तक भी पसंद जो कलाम जरूर बुधाईंदी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद दादू मोरू पुल का असो भाई मोहम्मद हसन मल्लाह मजहर अली मल्ला चवन था गुलाब कहाँ गुलाब खान कैसे हो प्लीज प्ले जवार फकीर का सॉन्ग सुनाओ और उस्ताद बुखारी की शायरी में अदा मोहम्मद हुसैन तवा ठीक हो तबियत सही है तवाजी वालेकुम असलम अदा बिल्कुल कोशिश कदास पसंद जो असा कलाम बुधरायूँ इंशाल्लाह टाइम बचो तो जरूर तवाजे पसंद जो कलाम बुधाईंदी गडा सखर का आई अब्दुल रहीम अदाजन की फरमाइश है तो असा अहमद मुगल के आवाज़ में कलाम बुधरा तो बिल्कुल मुझा मिठा अहमद मुगल जो कलाम तवाज लाए हाजिर है।

0: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो, मोरो की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
0: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

त प्रोग्राम में शामिल कयूं था आदा हारून जे फरमाइश ते आबदा परवीन जो ॾाढो ज़बरदस्त ट्रेक आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में ऐं मूंखे बि ॾाढो पसंदि आहे। उमेद तव्हां सभिनी खे इहो आबदा परवीन जो ज़बरदस्त ट्रेक पसंदि ईंदो।

0: It's 12 PM. This transact is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: डील खां सवाइ भई ईरान यूरेनियम हासिल करे सघूं था फ़ौजी कार्रवाई थिए या ॻाल्हियूं आम कामयाबी अमरीका जी थींदी अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकलीफ़ जो ख़िताब सां चवण हो त मुआहिदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे असां ईरानी क़यादत ऐं नेवी ऐं फिज़ाए खे ख़तमु करे छॾियो ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात नथो करणु चाहियां पर मुआहिदो थियण सूरत में मुलाक़ात ममकिन आहे लबनान सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी यूक्रेन सदर अज़रंस्की ऐं रूस सदर प्यूटन त सुठो लॻंदो भारत सां वापारी मुदो जल्द थी सघे थो ईरान सां मुआहिदे बाबति जल्द ख़बर पइजी वेंदी دیگر وزیر سکندر مومنی جی پیش کٹ وزیر محسن نقوی سے ملاقات پاک ایران لاپانے خطے صورتحال تے ڳالھ ٻولھ چکنا میں گھرتائی ایں سلامتی وارن معاملن تے بھی ڳالھن

नथो समझा पाकिस्तान जी जे कंतूल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलन खे बि बहितर नमूने समझूं था। रूसी सदर प्यूटन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि। फैज़गंज वेझो ॻोठ अलाजोड़ियो शहर में कारी इल्ज़ाम हेठि भाउ सां भेण क़तल। जवाबदार अली रज़ा शहर कुहारी जा वार करे टिनि ॿारनि जी माउ सुगरां खे क़तल कयो, जवाबदार फरार। न्यू सदाबाद में कोई शारा जो होटल तां लाश हथ। पुलिस मूजिबि लाश जी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे। फतरी गाॾियुनि जो मिस्त्री हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
4: मानो जे के तवा मोहब्बत इश्क चाहत ऐं इखलाकी नमूनन सा तमाम घणो बुलंद व बाला रखे हो जे त उन्हें के विसारण तमाम घणो हिन दौर में दुखियो कम है। केतरी भी दुनिया तरक्की करे वने, केतरा भी मानू तरक्की करे वन, केड़े किस्म जा भी माहौल पैदा थी वन, केड़े किस्म जी भी तरबियतू अची वन, केड़ा प्लेटफॉर्म्स अची वन, केड़े किस्म जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होजन, पर उन जे बावजूद जेका दिल है न, इंसानी दिल जेका कुदरत जे तरफ का मिलियल एक कुदरती तोहफो आहे, उन जे अंदर समायल माण्हू पंहिंजी अहमियत खे कॾहिं बि नाहे विसारे सघंदो ऐं उहा कॾहिं बि घटिजी बि न सघी आहे। दुनिया जी तेज़ तरीन तरक़ी याफ़्ता जेको दौरु हले पियो, उन तरक़ी याफ़्ता दौर में बि अच्छा अॼु बि माण्हुनि जी दिलनि में मोहबतूं नाहिनि रहियूं छा? बिल्कुलु माण्हुनि जी दिलनि में मोहबतूं आहिनि, माण्हुनि जी दिलनि में प्यार बि आहे, माण्हुनि जी दिलनि में इख़लाक़ बि आहे, माण्हुनि जी दिलनि में ख़ुलूस बि आहे, माण्हुनि जी दिलनि में मोहबत बि आहे।

त मुंहिंजा मिठासे कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन मैसेजनि जी तरफ़ हलंदासीं। ऐं मैसेजनि खां पोइ तव्हांखे शमन अली मीराली जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त ट्रेक आहे उहो ॿुधाईंदासीं। ऐं त असां सां गॾु आहे फज़ुलाबाद खां ठरी मीरवा। अच्छा, ठरी मीरवा खां असांजो प्यारो भाउ अब्दुल हक शर चयो त गुलाब भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा आहे, असांखे ढोल फ़क़ीर जो कलाम ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। अदा मोहम्मद हारून संदीलो पाण खे ॿुधी रहियो आहे, ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां अदा हारून तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो आहे ऐं उमेद त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो, इंजॉय बि कयो हूंदो ऐं तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो, छो जो आबदा परवीन शइ अहिड़ी आहे ऐं उनजा सॉन्ग बि अहिड़ा ई हूंदा आहिनि जो हर माण्हूअ खे पसंदि अचनि। शमन अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातो

0: ऐं अदा जन चवनि था अस्सलाम वालेकुम अदा, कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो जी? अदा बिल्कुलु मां ठीकु ठाक आहियां, ख़ुशि आहियां। तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो, ठीकु आहियो
1: मिठा?
0: फैज़ुल्लाबाद ॻोठाइठरी मीरवाह जो उतां अदाजन जो ही ॿियो मैसेज आहे अब्दुल हक शर जो, ऐं चवंदा अदा तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं ढोल फ़क़ीर जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कई त हाज़िर प्यारा तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। कमरदीन खां शमन अली सोलंगी, उन सां गॾु आहे एहतशाम समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी, चवंदा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शमन अली मीराली जे कलाम जी फरमाइश, त प्यारा शमन अली मीराली जो कलाम मां ॾिसो त तव्हांजे चवण खां बग़ैर ई प्ले करे छॾियो आहे, ऐं शमन अली मीराली जे कलाम हिन वक़्तु तव्हां उमेदु आहे त मज़ो बि शमन अली मीराली जे कलाम वधो हूंदो ऐं इंजॉय बि कयो हूंदो। ऐं अदाजन पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहिनि, त हुनखे स्पेशली मां पंहिंजे शो में भली कार चवां थो।

अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम में भलीकार ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा बि आहिनि ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचण वारो थी वियो आहे। इंटरनेट स्लो हुजण जे सबबु काफ़ी दोस्तनि जा मैसेज अञा थोरी असांखे रिसीव न आहिनि थी सघिया, ऐं जिन जा मैसेज रिसीव न थी सघिया आहिनि या असां हुनखे प्रोग्राम में शामिलु न करे सघिया आहियूं, त उहे दिलमी बिल्कुल बि न कजो, को मसइलो न आहे। वरी इनशाला ताला आयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे वारे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं पाण गॾु हूंदासीं, ऐं पोइ हुन में तव्हांजा मैसेज बि पढ़िबा, तव्हांजे पसंदि जा तव्हांखे सॉन्ग बि ॿुधाइबा, ऐं तव्हां सां प्यार भरियूं कचहरियूं बि कबियूं। त प्रोग्राम में हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक मुंहिंजे प्ले लिस्ट में आहे, उनखे बि प्ले कंदासीं, पर हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि मां चवां त ज़िंदगीअ में ॾुखिया वक़्तु आज़माइशूं ऐं तकलीफ़ूं हर इंसान ते अचनि थियूं, अहिड़ियुनि हालतुनि में सब्र ई उहो सहारो आहे जेको इंसान खे मज़बूत रखे थो। अल्लाह ताला क़ुरान मजीद बि फरमायो अथव, सब्र कंदड़नि सां बेशक अलाह सब्र कंदड़नि सां गॾु आहे। सब्र जो मतिलबु सिर्फ़ु तकलीफ़ बर्दाश्त करणु न, पर अलाह ते भरोसो रखंदे साबित क़दम रहण बि आहे। जॾहिं इंसान सब्र करे थो त अल्लाह ताला उन लाइ आसानियूं पैदा करे थो, दिलि खे सुकून ॾिए थो ऐं इनाम अता करे थो। तंहिं करे जेकॾहिं ज़िंदगीअ में का परेशानी, ॾुख या आज़माइश हुजे न, त मायूस न थियो, सब्र दुआ ऐं महिनत सां अॻिते वधंदा रहो, छो त हर राति खां पोइ सुबुह ज़रूरु ईंदी आहे, ऐं हर तकलीफ़ खां पोइ आसानी अची वञे थी। सब्र कयो, अलाह अव्हां सां गॾु आहे, ऐं संदसि रहमत हर ॾुखी घड़ीअ खां वॾी आहे।

मंदूर सखीराणी जी खूबसूरत आवाज़ है तवाजो सुंदर समातू तो मुझे मिठा से प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती जो वक्त पहुंची है पंजी पुजाणी देव रण का मेरे हमेशा मगर तवाके चंदा सी पाजो घणे का घणो ख्याल रखंदा कयो पाजन दोस्तन जो मिटन मटन जो ख्याल रखंदा कयो पाड़े वारन जो ख्याल रखंदा कयो दोस्तन जो नई खास तौर ते जेके ही तेज तरीन गर्मी हली रही हैं गर्मी के ढीह में पांजे नंढन बार जो ख्याल रखंदा कयो इन वक्त वेकेशंस हली रही हैं मोकलू हली रही हैं गर्मी जो पर बार की ट्यूशन वगैरह भी दींदा कयो अगर माँ बार की पढ़ियल लिखल है तो वह पांजे घर में पांजे बार के तालीम जरूर दिए जड़े तरीके से घर में उनके तालीम मिली स्कूल वो माहौल मिल तो स्कूल जो कल कम है वो हरगिज न विसर पांजे न्याणियों के दीनी तालीम जरूर दियो दुनियावी तालीम भी जरूर दिता कयो उम्मीद है मुझे इन गाल अमल कंदा अजोको दिहाड़ो जो है दुनिया में माहौलियाती तब्दीली जो दिहाड़ो है अजो एक वण जरूर पोखजो नंढड़ो हुए वो होत्रो हो कोशिश कजो एक वण जरूर पोखो वो वण पोखे कर फोटो व्हाट्सअप कर उम्मीद है त तव्हां मुंहिंजो इहो चवणु वठंदा इनशाला ताला हयाती रही त वरी तव्हां सां गॾु गॾु हूंदासीं ऐं मुंहिंजे प्ले लिस्ट में हदीका कयानी जो आवाज़ु आहे ॾाढो ज़बरदस्त त हदीका कयानी जे आवाज़ सां गॾोगॾु हिन प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजे ॿुधण ते हयाती रही त वरी गॾु हूंदासीं अलह वाही अलह निगहबान।

राधन किरण स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी सघी। राधन थरड़ी मोहब्बत नव गोट शाह पंज समेत ॿियनि ॻोठनि जी बिजली खां महरूम, सख़्त गर्मी सबबि रहवासी परेशान। मीरपुर मातल मां बि वकीलनि जो घोट थी सघे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी जी शदीद खोड़। रहवासियुनि जो एहतजाज, बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

सिंधड़ी में गरोड शाख के पुछड़ ताई पानी न पहुंचने खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज खिपड़ो मीरपुर खास रोड से धरणो बहायो पो आबादगारन जो आपासी अमले से मुंड के आबादगारन के पानी बेको करण जो इल्जाम पानी चोरी रोके गरोड शाख के पुछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो।

0: फैज़गंज अदालत में पानी की खोड़ खिलाफ पुसले के आबाद दरख्वास्त बुधनी अदालत इंदड़ बुधनी से चीफ इंजीनियर एक्सीन खैरपुर के जाती हैसियत में तलब कर वरतो। एसडीओ के कावड़ जो इजाद टिन दिन में पुछड़े तीन पानी पहुंचाए तस्वीरों से गड रिपोर्ट पेश करण जो हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ शहर में एसटीपी जा एहतजाज शहीद वेमन के बाजियाब कराए महंगाई के जब्तों आने का मुतालबो। कनकोट चंबर फया सिटी वाड़ो ए बिन शहर में एसटीपी पारा एहतजाज किया वो मुजाहन सिंध में मंजाज का विक्रो जारी है। अमन मान सूरतयाल भी खराब है, अमन बहाल कराया वे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583569 03003 8 5 6 9।
4: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छ नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4456 ऐं तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग मीटिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836

वफाकी हुकूमत जो कराची शहर के मुख्तलिफ मनसूबन लाइ फंड जारी रखने जो फैसलो कराची के रस्तम घटन ए पानी के मनसूबन लाइ पैसा रखा वा वफाकी बजट दस्तावेजन मूजिब कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ करब 98 करोड़ रखने की तजवीज़ जिले और मनसूबन लाइ 26 करोड़ नाजमाबाद ए लियाकतबाद के मनसूबन लाइ 37 करोड़ रखने की तजवीज़ लांडी जमान ए कोरंगी टाउन के मनसूबन लाइ 35 करोड़ रखा वा कोरंगी ए मरीज जिले के मनसूबन लाइ 5 करोड़ रखने वाली तजवीज़ भी बजट में शामिल कराची में जहां मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के क़ायम लाइ 40 करोड़ रखने की तजवीज़ स्पेशल रिसर्च एंड फैसिलिटी केयर लाइ 39 करोड़ रुपया रखने की तजवीज़ कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ 5 करोड़ रखने की तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ व्यापारी अदालतन के क़ायम लाइ कानून साज़ी जो फैसलो करे वरतो मौसूल की तैयारी लाइ कमेटी कायम कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी जो कन्वीनर मुकर्रर अटॉर्नी जनरल नाणे वारे मुख्तरी वज़ीर कानूनी माहिर कमेटी में शामिल कमेटी व्यापारी अदालत के क़याम ए बाबत कानूनी मसलो तैयार कंदी कमेटी व्यापारी तकरार के निज़ाम जो जायज़ो वठी सिफारिशूं पेश कंदी कानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट भी तैयार कई वेंदी डील का सिवाय भी ईरान यूरेनियम हासिल कर फौजी कार्रवाई थिए या गाल कामयाबी अमरीका जी थी अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीर के खिताब चवण हो तो मुहिदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सके असा ईरानी क्यादत नेवी ए फिजाए के खत्म कर छो ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नथो कर चाहें पर मुहिदो थे मुलाकात मुमकिन है लबनान सत हाल से नजर रखनी पवी यूक्रेनी सदर आए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कन तो सुठो लगन भारत से व्यापारी मुआदो जल्द थी सके तो ईरान से मुआदे बाबत भी जल्द खबर पैजी वेंदी।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के जिले पंजगोर में ऑपरेशन छह दहशतगर्द मार गया आई एस पी आर मौजूद गुजे इतलात है फोर्सेज पंजगोर में ऑपरेशन किया ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जहा छह दहशतगर्द मार गया केतरा ही थाक तबाह दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाई जारी होंदियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते दे लाए 03201800003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03385569

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8051
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहाँ मुनक

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़र रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301 91 8 51।

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: लही न तो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
1: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: जे मतलब मनसूबन लस्तन घिटन ऐं पारा वफ़ाक़ी बजट जे दस्तावेज़नि मूजिबि लाइन बस सर्विस लाइ करब दिल्ली ओला जे मनसूबनि लाइ 26 करोड़ नाज़िमाबाद ऐं मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़ लाइ औरंगी टाउन जे 30 करोड़ रखिया वेंदा सेंटर जे 1 करोड़ रखण जी तजवीज़ वाराणसी यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जे क़याम लाइ शहबाज जे क़याम लाइ क़ाइम कानून वारी तारिनर मुख्यती वज़ीर ऐं कानूनी माहिर कमेटी में शामिल कमेटी वापारी कमेटी वापारी तकरारनि वठी तयार कई वेंदी सघूं था पोइ इहा ॻाल्हियूं कामयाबी अमरीका जी ई थींदी ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब के ख़िलाफ़ वाइदे तहत इहा नथो रखी सघी क़यादत नेवी ऐं फ़िलहाल ते नज़र ॾिनी छॾ प्यूटन मुलाक़ात लॻंदो असां मुआदे बाबति बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी ईरानी परॾेही वज़ीर तेहरान जो सूरत में गवाहनि खे हामी न आहे रहियो
1: and

0: आसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आसानी चाहे तो स्कीम जरिए 30-40 लाख दुकानदारन के टैक्स के दायरे में आंदो विंदो जेको तबको टैक्स न दींदो हू हाणे देण चाहे तो। मुमलकती वजीर बिलाल अज़र कयानी चयो आहे त मुशावरत ऐं वापारी तंज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़नि दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियुनि जो चवणु आहे त हुकूमत IMF जे मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

ईरान जंग नथो चाहे जारियत थी त भरपूर जवाब दिनो वेंदो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची चयो आहे त ईरान जो मौके वाज़े आहे त तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो दिफ़ा करण सां गॾु भरपूर जवाब ॾींदो। ईरान खिते में तकरारुनि जो कॾहिं बि हामी नाहे रहियो। नथो सम्झां त पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झो था। रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि। ईरान ऐं अमरीका विच में जंग बाद पाकिस्तान सफारती किरदार सबबि वाशिंगटन जो अहम इतिहादी थी वियो। अमरीका ईरान जंग दौरान पाकिस्तान अहम सफारतकारी किरदार अदा कयो। अमरीकी मीडिया चयो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरूआती जंगबंदीअ में अहम किरदार अदा कयो। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल ऐं वज़ीर आज़म जी केतिरा ई भेरा तारीफ़ बि करे चुको आहे। मुस्तक़िल मुआहिदे ते पहुचणु अञा बि वॾो चैलेंज बणियल आहे। पाकिस्तान घुरबल नतीजा न ॾिना त अमरीकी नाराज़गी ऐं दॿाउ जो शिकार थी सघे थो। पाकिस्तान आलमी सतह ते किरदार अदा करण लाइ पुरअज़म आहे। दुनिया खे महफ़ूज़ करण लाइ सरहदनि जी सिक्योरिटी लाइ बि क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि। बिश्केक में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरेलू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त बॉर्डर सिक्योरिटी लाइ SCO जो प्लेटफॉर्म अहम आहे। पुरअमन दुनिया तरफ़ वधणो आहे जंहिं लाइ गॾियल कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। घरेलू वज़ीर बिश्केक में ईरानी हमनसब सां बि ॿीहर मुलाक़ात कई। ॿिन्ही घरेलू वज़ीरनि तकरार जे ख़ात्मे लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि ज़ोर भरियो आहे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 96 8051

0: 0301-380-8743।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: कोशिश भी की जाती है, और अगर हम देखें तो हमारे बेले हमारे कच्चे में बहुत से जंगलात हैं जिनको कटाई करके भेज दिया जाता है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए कि अगर हम दरख्त इतनी ज़्यादा कटाई करेंगे तो हमारा माहौल कैसे मैनेज होगा, हमारे लिए अच्छा माहौल कैसे पैदा होगा। तो हमें अपने दरख्तों की कटाई रोकनी होगी और कंसर्न जितने भी इदारे हैं उनको जनाब फिगर आउट करना होगा कि कितने दरख्त काटे जा रहे हैं, उनको नज़र रखनी होगी कि आखिर ये क्यों काटे जा रहे हैं जनाब, और जो है अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए हमें ये सब चीज़ें रोकनी होंगी। आपका अपना शफाक आपके साथ हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, जनाब कौन हमारे साथ मौजूद है? सॉरी
1: सच्ची मोहब्बत
0: अल्लाह अकबर
1: सच्ची मोहब्बत कयम सदा साफ पर घर में कया गंद रोज अची रस्तारो के बियाड़ी डण डण पया डंद
0: अबाड़े
1: अल्लाह तुम जा माशूक चले चला कादर भने कंद तुका तुम जा सब मौला छड़ी जो मिलन।
0: वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशूक खोसो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है माशूक खोसो, तमा त मन मानन जा कंदी भनी सरिया पानी शायरी में मानू डाने लगा पे आनी नहीं करे मरी वैसे आशिक तो हमेशा मजबूर आए, आशिक तो हमेशा लाचार आ गरीब, हाँ वो आशिक माना ताकतवर थी भी आता मानन जा कंधा तो बने हाँ 2026 आशिक माना ताकतवर थी भी हाँ जरा जी जी वाह वाह वाह वाह वाह
1: माण्हू तुंहिंजे मुल्क जा ॾिसी कावड़ कनि
0: तव्हांजो
1: माशूक खोसे जी दुआ कनि त ख़ुशि हूंदा सभु ख़ैर।
0: वाह वाह वाह वाह, हाणे माना तव्हां हाणे माना माना धमकियुनि जे बाद दुआऊं त बि ॾियो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, माण्हू बेज़ार बि त थींदो आहे न, आख़िर केसी ताईं दुआ ॾींदो, केसी ताईं हुन जी खेर घुरंदो, आख़िर में त कावड़ में ईंदो न
1: माण्हू।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु, माशूक साहब यार ठीकु ठाकु आहियो, मज़े में आयो, गर्मी जो ॾियो।

0: Βάλε.
1: Κερνή, εσύ ότι που είχε τα πέρα ρίχνα βόλα να κάνει ένα κουλκαρία.
0: Μάσαλα, μάσαλα.
1: Κατ' την τραβόλα, αν το αθώ, σε κάτω, σε κούνα, μαζό.
0: Ζαμπαδάς, ભલી ગાલ હે તે તાં જે મના જે કા ઇલાકે મે વણકારી આહે આઈ ગ્રીનરી આહે તે તમા ઉન કે વધાયો આયા ઇન કે ઘટ ન કરે દો અગર કોઈ ભી માણુ વણ મના વઢે તો તા ઉન કે રોક્યો તાં જે જે કા ઇલાકે મે કોઈ માણુ વણ વઢે તો કોન થુ ના माशाल्लाह जबरदस्त आहे, जबरदस्त आहे यार, 100 वण लॻल आहे त भली ॻाल्हि आहे, इन्हनि खे बि अञा वधायो त जीअं जबरदस्त ग्रीनरी थी वञे।
1: हा
0: बिल्कुल। हा माशूक भाई, गानो कहिड़ो ॿुधण चाहियो था अॼु?
1: गानो सर शमन मीरानी जो।
0: कहिड़ो कहिड़ो?
1: दिलदार,
0: क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ऐं डेडिकेट कंहिंखे करण चाहियो था?
1: डेडिकेट राजा खान नंदनी।
0: राजा खान, वाह वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच माशूको साहब। आप
1: जो खास साजिद मेतलो, इरफान सुमरो
0: जी जी, सभी के नाले में ओके जनाब, ता सबनी दोस्तन के आसान सलाम, थैंक यू सो मच, पांजो खास ख्याल रखजो। ओके सर, ओके। जी जनाब, हमारे साथ थे माशूक खोसो भाई, और माशूक खोसो के भाई बाद हम जनाब जरूर इनका गाना प्ले करेंगे, लेकिन शो की एक और कॉल भी तो ले लेना जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, लगता है जनाब फिर कोई जनाब जो है कॉल्स पर कोई हुआ मानो जो ना डाण अची वेठी कॉल जे सिग्नल से, तो खैर कोई गाल ना है, असा ने डाण के भजायूं था जेसी ताई तवा असा सबरी सा गड रहो, असा के कॉल कियो जनाब 03000113488 असा जो नंबर आए, आई जनाब असा सा गड रहो शाम जे 7 बजे ताई, छो ता असा तवा सा गड, तवा असा सा गड हुंदा हो, तो तमाम घणो मजो इंदो आ, छो ता आज फ्राइडे जी मोकल भी आ है, आई उए भी जनाब जडी मोकल हुंदी आ ता घर माण्हू ॿाहिरि निकिरंदो आहे, दोस्तनि सां गॾु चांहि शांहि पीअंदो आहे, दाप्तो शाप्तो खाईंदो आहे, ऐं उहो बि हाणे उज़े वारी ईद गुज़री आहे त दोस्तनि खे बि घुरायो, दावतूं कयो, कोई कबाब शबाब पकाए पचाए खणी अचो, कोई बिरयानी खणी अचे, माना जीअं गैदरिंग थी वञे त मज़ो अची वेंदो आहे। है जनाब 5:43 टाइम इज़ राइट नाओ, ॿाहिरि हवा बि हले थी ऐं थोरो घणो मौसम सुठो बि आहे, पर हर कोई माण्हू चाहे थो त सुठा सुठा जेका आहिनि बादल अची वञनि ऐं बारिश बि थी वञे त ज़बरदस्त ॻाल्हि थी वञे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे जनाब। असां वठूं था हाणे शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल ऐं चाहियूं था पंहिंजे कॉलर खे जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: कहिड़ा था असां सभिनी सां गॾु
2: जागदा साईं, सच पुछो त तव्हांजो शो बहितरीन हली चली रहियो आहे।
0: थैंक यू सो मच।
2: टिम कयूं ॿुधूं था तव्हांजो शो।
0: थैंक यू।
2: पर हे जेको भाचो आहे माशूक नालो हो न खोसे जो?
0: हा हा, माशूक खोसो भाई।
2: इन जे त साईं वरी शायरी रिकाटे तोड़े छॾा।
0: ज़बरदस्त शायर आहे, ऐं माना इहे गाननि लाइ बि आई थिंक शायरी चवंदो आहे भाउ।
2: जी जी, ज़बरदस्त यार, इहो जे ॿुधे थो त मां बि चवंदोमांसि त कॾहिं जे ताल लॻेव त मुंहिंजी बि शायरी मुंहिंजे नाले छॾियो बाबा।
0: सही सही सही, माशूक भाई तव्हांजो पैसे ज़रूरु ॿुधंदो। इहो ॿुधायो
2: हलूं था असां गर्मीअ जे हिसाब सां ऐं वणकारे जे हिसाब सां।
0: हा बिल्कुल,
2: त असां बिल्कुल सिंधू दरिया जे किनारे ते असांजो माना कच्छ जो इलाइक़ो आहे।
0: अच्छा, गुड
2: आहे। कुरेशी ॻोठ खां उत्तर तरफ़ ते बंद खां हेठि लहो त अलफ़क़ चवंदा, अलफ़क़ खां बाद में हल फिटल हिकिड़ो दरिया जो गस आहे, उन खां मथां आहे केसरी छॾे।
0: सही।
2: हाणे तकरीबन 20-25 सालनि पोइंदा वञूं त असां वटि वॾी वणकारी।
0: अच्छा।
2: बबरू हो, कंडी ही,
0: पोइ
2: ॿिया खोड़ सातरा वण हुया, पोइ आहिस्ते आहिस्ते जेके पठाण आया जा ॿियूं मुख़्तलिफ़ क़ौम आहियूं त वण कटिजी विया।
0: अच्छा, माना हुननि रहण लाइ, रहण लाइ पंहिंजा घर ठाहिण लाइ माना हुते वण कटी छॾिया, माना जेका बि
2: बिरादरी सां बिल्कुलु वण कटिजी विया। हाणे मुसलसल जेको आहे त बबरु वॾो थधो आहे, सिंधी बबरु आहे न?
0: जी जी।
2: उहो थधो आहे उहो न आहे त असां वटि कुझु गर्मी जी शिदत आहे।
0: चलो कोई ॻाल्हि नाहे, तव्हां बि हाणे वण जेको आहे उहा पोखियो ऐं पौधा पोखियो त जीअं तव्हांजे हुते गर्मी घटि थी वञे, माहौल सुठो थी वञे। गानो प्ले कयां थो शमन जो, कंहिंजे नाले करणु चाहियो?
2: साईं गानू ऐं लेस खां आनू, लेस खां आनू रूह जे गज़ल गानू लाज़मी आहे।
0: वाह वाह वाह ज़बरदस्त।
2: बाक़ी त असांखे तव्हां शमन चयो नी?
0: जी जी
2: शमन, पर नगमो अहिड़ो ॿुधाइजो त मुंहिंजो हिकिड़ो ई यार आहे, ॿियो यार न कंदो शमन जो।
0: हा मां बिल्कुलु फ़िलहाल तो इहा प्ले कयां थो, तूं ॾे हिकिड़ी आहे मयार माशूक कोसो भाई जी फरमाइश ते।
2: सही आहे, सही आहे, कोई मसइलो न आहे। इहो असांखे ॿुधायो कुझु मुंहिंजा भाउर बि आहिनि, कुझु मां सां दोस्त बि आहिनि।
0: जी जी
2: अगम त भाउ इश्ताक नावी,
0: थैंक यू,
2: जेको शो करे रहियो आहे इहो नगमो हुन जे नाले ते।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: मुंहिंजो भाणी जा रफ़ीक जती गोली मार में वेठो आहे।
0: सही।
2: तंहिंखां बाद में मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतो, मुंहिंजो भाचो आया त मां जतो यार तार लुंड ॿुधां थो अथव सेठारजन खां।
0: अच्छा, गुड।
2: तार लुंड खे बि खोड़ सारा सलाम, तव्हांजो शो ॿुधे थो। बाक़ी जेके आल ताल ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जतीअ पारां सॼे सथ खे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ब्रेक जो टाइम बि थियण वारो आहे त मां हलां थो ब्रेक जे टाइम ते ऐं पोइ हुनजे बाद गानो तव्हां इंजॉय कंदो शमल अली मिराली जी वॉइस में।
3: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: जी जनाब घट मिलंदो आ मुखे यार या तो सा आहे मुजी मयार बिल्कुल जनाब असा चाहियो था असा ता सा मिलंदा रहूं इन लाए जनाब वापस मोटी आया हूं ता सा घर ता जी शो आई लव यू ऑल में वटो द शो द नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अगर मुखे ता जी आवाज ना आई तो कोई कॉल ड्रॉप थी विंदी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब ता जी आवाज छू न थी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर लेते हैं शो की एक और कॉल और जनाब कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है कौन है कहां से हैं जनाब हाफिज साहब
1: जी
0: हाफिज साहब कहां से कॉल किया है हाफिज साहब मोरो से क्या बात है जनाब मोरो वाले जिंदाबाद मोरो में गर्मी का हाल चाल दें हाफिज साहब कैसी है गर्मी
1: भाई गर्मी तो है
0: हाय मर गए
1: मोरो में आपका प्रोग्राम चल रहा है
0: नहीं
1: प्रोग्राम कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है
0: मेरा मोरो वालों को क्या हो गया मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं कनेक्ट करते यार क्या हो गया मोरो वालों मैं अभी इनके कान खींचता हूँ
1: यार वो
0: चले जनाब मैं बिल्कुल अभी शिकायत करता हूँ इन लोगों की ये नहीं सुधरने वाले मैं अभी करता हूँ कॉल मोरो वालों को खिंचवाता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं ऑन एयर करते वहाँ से
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है आप बिल्कुल सुनते हैं हमको लगा
0: हाय हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम दिल से सुनते हैं आप हमें इतना प्यार करते हैं हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बस हम अभी चलवाते हैं जी जी केड़ो वाह वाह कें जो आप यो गानो अच्छा मुमताज मलाई जो जी जी सही हाजिर हाजिर मैं अभी बोलता हूँ थैंक यू सो मच हाफिज साहब जी जनाब हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं कि मोरो कनेक्ट नहीं हुआ तो जनाब मोरो वालों कहाँ चले गए हो यार मोरो तो कनेक्ट करो ना यारा और हमारे जो जितने भी दोस्त हैं बेचारे वो सब कह रहे हैं कि मोरो कनेक्ट नहीं है तो ये तो नाइंसाफी है ना मेरे साथ खैर एनीवे आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ रहकर हमारी इस ट्रांसमिशन को एंजॉय कीजिए खैर जनाब अब मोरो वाले भाई की फरमाइश पर मैं गाना प्ले करने लगा हूँ आई थिंक जनाब फिर सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्यों ना गाना प्ले कर दूँ और एक कॉल लेके फिर गाना प्ले करते हैं अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यारा भाई केड़ा हाल चाल है न अलहमदुल्ला मुझे जिंदगी सफ़ा तुम भारे की दुआओं से गड सुठी गुजरे थी यो बुझायो तो मां जो है मुमताज मलाई प्ले कर चुको है इंतजार आ मौत बराबर कें नाल से करना चाहो जलाल भी बुझा जल, जल...
1: जल...
0: अल भेणा पक्की परदेसी प्ले कर चुको बुधो जी जना पखी परदेसी आई जो मुमताज मलाई जो गानो हुयो वो आफ्टर द ब्रेक प्ले कंदा से जदी मोरू में प्ले थी वो ठीक है यो बुधो खोड़ सार एंजॉय कर

वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो। स्कीम ज़रिए 30 खां 40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तको टैक्स न ॾींदो हो हाणे ॾियण चाहे थो। ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी जो चवणो हो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF ने माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि हुकूमत IMF जे मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

0: वफाकी हुकूमत जो कराची शहर के मुख्तलिफ मनसूबों लाइ फंड जारी रखने फैसलो कराची के रुस्तम घिटिन पानी कराची के समूरन घिटिन पानी के मनसूबों लाइ भी पैसा रखा वेंदा। वफाकी बजट के दस्तावेजन मूजिब कराची के ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1,98 करोड़ रखने की तजवीज। जिले ओलह के मनसूबों लाइ 26 करोड़ नाजमाबाद ए लियाकताबाद के मनसूबों लाइ 37 रखने की तजवीज शामिल। लांडी जमान ए कोरंगी टाउन के मनसूबों लाइ 85 करोड़ रुपया रखा वेंदा। कोरंगी ए मलिर जिले के मनसूबों लाइ 5 करोड़ रखने वाली तजवीज बजट में शामिल। कराची में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के क्याम लाइ 40 करोड़ रखने की तजवीज। नेशनल चर एंड फिजिबिलिटी केयर लाइ 39 करोड़ रखने की तजवीज। कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क्याम लाइ 5 करोड़ रुपया रखने की तजवीज शामिल। वजीर आजम शाहबाज शरीफ व्यापारी अदालतों के क्याम लाए कानून साजी जो फैसलो करे वरतो। मसवदे की तैयारी लाए कमेटी कायम। कानून वारो वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ कमेटी जो कन्वीनर मुकरर। अटॉर्नी जनरल नाणे वारो मुमड़ी वजीर ए कानूनी माहिर कमेटी में शामिल। कमेटी व्यापारी अदालत के क्याम बाबत कानून मसवदो तैयार कंदी। कमेटी व्यापारी तकरारों के निजाम जो जायजो वठी सिफारिशों भी पेश कंदी। कानूनी नुकतन से तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की वेंदी। डील का सवाल भी ईरान जो यूरेनियम हासिल सकूं था फौजी कार्रवाई थे या गालियों कामयाब अमेरिका की थी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब खिताब संदस चवण हो तो मुआदे से ईरान एटमी हथियार न तो रखी सके। असा ईरानी क्यादत नेवी ए फिजाइया के खत्म कर छो। लबनान से नजर रखनी पवी। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कर तो सो लगन। ईरान से मुआदे बाबत भी जल्द खबर पेजी वी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डन टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATM एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 0307359210।

0: काफ़ी डॉक्टरनि खे ॾेखारे चुको आहे तकलीफ़ वधंदी पई वञे त उहो रूबरू ॾेखारींदा वधीक बहितर आहे. थधो पाणी तरियल शइ सणब चांवर बंदि करे छॾियो.
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ वञे समाधान में पहुचे पियो. डॉक्टर साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहे, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि. सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि. डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि. डॉक्टर साहिबु, दम हुजे, सहिको हुजे, एलर्जी हुजे, मादे जी अल्सर, गोॾनि जोड़नि संदनि जो सूरु, फालिज, मोहिड़ा, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कंदा आहिनि. कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. दुआऊं अलहमदिल्ला. केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो? ख़ुश आमदी चऊं था निसार साहिब खे. निसार साहिबु, छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, घणनि ॾींहंनि खां वठी? चोथो पंजो ॾींहुं आहे. पोइ त छॾणु घुरिजे, डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो त बहितर थींदो. परे आयो विझायो? मुंहिंजो परे आयो विझायो? अच्छा, उंगोर जेको मसलो ई कोन्हे, हलिया जो डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो, वधीक डॉक्टर साहिब ॿुधाईंदो. जी डॉक्टर साहिब,
0: जेसिताईं बिल्कुलु रूबरू ईंदा त वधीक बहितर आहे. फ़िलहाल थधो पाणी, तरियल शइ, चांवर, खटी शइ वग़ैरह इस्तेमालु हरगिज़ न कनि. रूबरू ॾेखारे ऐं दवा वठंदा त वधीक बहितर रहंदो.
1: डॉक्टर साहिबु, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि. फालिज, मोहिड़ा, अहिड़ा चहिरे ते छायूं, चहिरे जा दाग दबा, चहिरे जी ख़ारिश, मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, नक, कन, दिलि जा मर्ज़, टी बी, जलन, कब्ज़, जिगर जा मर्ज़, हथनि पेरनि जो सड़णु, फट, फुरड़ियूं, जिस्मानी कमज़ोरी, चिटी जी बीमारी, दड़ बुख जो न लॻणु. दड़ हिकिड़ी ख़तरनाक बीमारी आहे, भग जो न लॻणु. मर्दनि ऐं औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि. डॉक्टर साहिबु, अॼु जेको असांजो मौज़ू आहे फैटी लीवर जे हवाले सां, यानी लीवर जे हवाले सां ई आहे, पर जेकॾहिं असां माज़रत सां थोरो दड़ मुताबिक़ जेकॾहिं ॼाण असांखे ॾींदा त इहा जेकॾहिं तव्हांजी महिरबानी थींदी, जेकॾहिं हिकिड़ो मुमकिन हुजे. छोजो दड़ हिकिड़ी ॾिठो आहे त जंहिंखे बि थिए थो त ॾाढो माना हिकिड़ो
0: परेशानी,
1: रिंग वारम
0: तिको बणिजी वेंदो आहे, जंहिंखे असां रिंग वर्म चवंदो आहियूं. पोइ उनमें इन्फेक्शन पैदा थी वेंदो आहे. उनजी केयर तमामु बहितर नमूने सां करणु खपे. उनजी केयर तमामु ज़रूरी आहे. खाइण पीअण जे हवाले सां चांवर, खटी शइ ऐं उहा हिकिड़ी क़िस्म जी, उन में कोशिशि इहो करणु घुरिजे जो टुवाल वग़ैरह उनजो माण्हू अलॻि इस्तेमालु करे, हर मरीज़ जेको आहे सो उनजो ऐं साबुण उनजो अलॻि इस्तेमालु हुजणु घुरिजे, ऐं खटी शइ वग़ैरह हरगिज़ इस्तेमालु न करे. उनमें होम्योपैथिक में हुनजी कामयाबु ट्रीटमेंट आहे, जेके असां पेशंट खे ॾींदा आहियूं त कहिड़े क़िस्म जी बि ॾढ हूंदी आहे उहा हुनजी छॾे वेंदी आहे.
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो. डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह असांजे स्टूडियो में मौजूदु. डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर, सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि. ॾसु बिल्कुलु आसान आहे डॉक्टर साहिब जो, जेके कोटड़ी कबीर खां अचनि था, बिल्कुलु शुरूआति में ई जेको पेट्रोल पंप अचे थो वधणपुटरा, उनजे साम्हूं आहे डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक. या जेकी सेठारजा खां अचनि था डेपारजा रोड खां, या वरी जेके ठरी रोड खां अचनि था, जेकॾहिं बाईपास खां फ्री अचनि था त उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु बाईपास खां जीअं कोरड़ी कबीर खां दाख़िलु थींदो आहे टर्न खाई करे शहर में, त उते ई वधणपुटरा पंप ते ई जे साम्हूं ई डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक आहे. या जेकी हालाणी जे तरफ़ खां अचनि था, हालाणी रोड खां या शहर ॾांहुं अचनि था, सैलाबाद रोड खां अचनि था, स्टेशन रोड ॾांहुं अचनि था, त उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु आसानी आहे. वधणपुटरा पेट्रोल पंप मशहूरु आहे मेहरापुर शहर में. डॉक्टर साहिबु उते मौजूदु हूंदा आहिनि सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर. डॉक्टर साहिबु सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि. दम हुजे, सहिको हुजे, एलर्जी हुजे, चमड़ी जी का बि बीमारी हुजे, ख़ासतौर ते जेके पथरी वारा हज़रात आहिनि उन्हनि जे लाइ इहा हिकिड़ी वॾी ख़ुशनसीबी आहे जो डॉक्टर साहिबु मेहरापुर में मौजूदु आहे. छो जो ऑपरेशन थियण खां बाद इंसानु अधु थी वञे थो, पर पिते जी पथरी हुजे ऐं या इन खां अलावा गुर्दे जी पथरी हुजे, मसाने जी पथरी हुजे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि. जिन जा वार छणी था वञनि पिया, या जेके वज़न जिन जो वधी थो वञे पियो, या जिन जो वज़न घटि आहे उन्हनि सभिनी, या जेकी नंढड़े कद वारा आहिनि जिन जो कदु नथो वधे, उन्हनि जो सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि. डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह.

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: केटीएम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले अवाम दोस्त गरीब दोस्त ऐसे मंसूबे ऐसे मुआशी पॉलिसीज लेकर आए जिसमें ना सिर्फ इस मुल्क में मुआशी तरक्की हुआ मगर मुआशी तरक्की किसका हुआ? मुआशी तरक्की पसमांदा इलाके का हुआ, मुआशी तरक्की गरीब तबका का हुआ, मुआशी तरक्की किसान का, नौजवान का, मजदूर का, मेहनतकश का, सफेद पोश का हुआ तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। तरक्की दूसरी सियासी जमातों के दौर में अमीर तबका करता है, वो इलाके करते हैं जो आज भी तरक्की करते हैं वो मजीद तरक्की करते हैं, जो पसमांदा इलाका है वो मजीद पसमांदा हो जाते हैं, जो अमीर होते हैं वो अमीर तर होते हैं, जो गरीब तर वो गरीब तर होते हैं। ये समझते हैं कि मीशत की तरक्की का मतलब उनके अमीर दोस्तों का मुआशी तरक्की, वो समझते हैं रोजगार के मौके मौके पैदा करने का मतलब अपने अमीर दोस्तों को मजीद पैसा देना ताकि वो मजीद लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर आप असल मानों में मुआशी तरक्की चाहते हो तो अमीर पे ध्यान देने के बजाय अब गरीब को ध्यान दिया जाए। पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की तब होती है जब किसान तरक्की करे, जब मजदूर तरक्की करे, जब मेरा नौजवान तरक्की करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये समझा कि अगर आप पसमांदा तबका का, आप गरीब तबका का मुआशी ख्याल रखेंगे तो पूरा मीशत उठ पाएगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यही सियासत की, यही मीशत चलाए और यही वजह है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मशहूर है और मशहूर थी।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-333-859।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: so-

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: रब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाए 03201800003।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
0: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
0: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100

0: रहंदी।
1: हाँ दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो। स्कीम ज़रिए 30 खां 40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तबिको टैक्स न ॾींदो हो हाणे ॾियणु चाहे थो। मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी चयो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियनि जो चवणु आहे त हुकूमत IMF जी मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी करण जो फ़ैसिलो। कराची जे समूरनि घिटियुनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाकी बजट जी दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 अरब रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जी मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जी मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़। लांडी, ज़मान टाउन ऐं कोरंगी टाउन जी मनसूबनि लाइ बि 35 करोड़ रखिया वेंदा। कोरंगी ऐं मलीर ज़िले जी मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारी तजवीज़ बि बजट में शामिल। कराचीअ में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर जे क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्चर एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। कराचीअ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जे क़याम लाइ बि

0: पंज करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ वापारी अदालतुनि जी क़याम लाइ क़ानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसवदे जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइम। क़ानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी जो कन्वेनर मुक़रर। अटॉर्नी जनरल नाणे वारो मुल्कती वज़ीर ऐं क़ानूनी माहिर कमेटीअ में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जी क़याम बाबति क़ानूनी मसवदो तयारु कंदी। कमेटी वापारी तकरारुनि जे निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। क़ानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयारु कई वेंदी।
1: शहीद मोहतरमा बैनर जी भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई।
2: इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ्फुज़ करेंगे।
1: आपकी दरमियान में खड़ा होके ये अपील करता हूँ, ये जद्दोजहद गिलगित के अवाम का जद्दोजहद है, इसका फायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, गिलगित के अवाम का होना है। 18वीं तरमीम का तहफ्फुज हम गिलगित बल्तिस्तान को इंशाअल्लाह ताला मिलके दिलवाएंगे। हमारा मुआशी पॉलिसी ना सिर्फ हके रोजगार दिलवाएगा मगर मुआशी इंसाफ दिलवाएगा। अब 7 जून को तीर पे मोर लगाए हके रोजगार गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हमने दिलवाना।
0: पंजाब के अरिड़ी तरमीम जो सब का फायदो थो। हाँ तरमीम की दिफा लाए तैयार ना हैं। अरिड़ी तरमीम जो दिफा न कर सकंदड़ गिलगित बल्तिस्तान के हक कि डेराई सकंदा। गिलगित बल्तिस्तान में चून जलसे के खिताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावर भुट्टो चयो तो गुजरियल भेरे गिलगित बल्तिस्तान वारन जी वोट ते धाड़ो लगो, इन भेरे ज्याती थियण न डींदासीं। अवां के फार्म 45 जो बंदोबस्त करणो आहे। सिंध वांगुर जमीनी जा मालिकीअ जा हक ऐं सिहत जो निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान खे असां ॾींदासीं। गिलगित बल्तिस्तान वारनि खे फ़ैसिलो करणो आहे त संदन नुमाइंदगी केरु करे। खिते में अमुन वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहियूं।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-5769-0300-3888-5699।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195570724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

sacan de moña, estaban de pendejos, se arde el asumbro. केड़ा हाल आहिनि कीअं आहे मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स, उमेद त तव्हां ठीकु हूंदो ऐं ख़ुशि हूंदो ऐं जिते बि हूंदो आबाद हूंदो ऐं असां सभिनि जूं तव्हां ॿाहिरनि सां भेनरुनि सां दुआ आहे त अल्लाह ताला कंदो जेको बि तव्हांजो हर पल आहे उहो ख़ुशियुनि सां गुज़रंदो ऐं कॾहिं बि तव्हां को ॾुखियो न ॾिसंदो ऐं सुबुह जेको तव्हांजो ॾींहुं गुज़रनि तमामु घणो बहितरीन ऐं ख़ुशहाल वारी ज़िंदगी वारो गुज़रंदो। आमीन।

तोखे पल पल मुंहिंजा इशारा हुआ, तॾहिं वार मुंहिंजा बि कारा हुआ। हवाउनि बहारूं हुआ मस्त वण टण, का ख़बर कोन हुई, बस इन नज़ारा हुआ। जवानिन असांजो नज़रूं माण्हुनि जूं, पंहिंजा बंजी मारिया विया प्यारा हुआ। सॼण जोखे पांधनि खे सभिनी थे चाहियो, मगर नाज़ तुंहिंजा निहारा हुआ। लिसनर्स, प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में शामिलु थियण जो तमामु घणो ऐं आसान सवलो तरीक़ो आहे, मां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां थी, नोट कयो। पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज ऑप्शन वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, केम समुझ फरमाइश कयो या कंहिंजे नाम डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नालो लिखी 888 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। हलो त ख़ूबसूरत शमन मिलारे मीराली जे आवाज़ में तमामु घणो बहितरीन सॉन्ग आहे, राति चंड लहे न पियो, वार खोले सुतो, अचो त सॉन्ग खे गॾु इंजॉय कंदा हलूं था।

तू आ बेरो वेगो मुझी निंड फिटी रातियों जागी कटिया मस्त करे पोए मुंह थई मटायो ओ दर्द मूते तो आ रुलायो कयम कारो वगो मुझी निंड फिटी रातियों जागे कटिया जोखियो पांदन बेवस फातो दर्द जू जे वट नाए को आथो टुटरो सिक जो सगो मुझी निंड फिटी रातियों जागे कटिया तोसा नी लगो मुझी निंड फिटी अला निंड फिटी।

प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में शामिलु थियण जो तमामु घणो आसान सवलो तरीक़ो आहे, मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां थी, नोट कयो। पंहिंजे मोबाइल खणो, राइट मैसेज ऑप्शन वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, केम सॉन्ग फरमाइश कयो या कंहिंजे नालो डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे छह नालो लिखी ट्रिपलेट वन ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो।

वेलकम बैक सामी त हींअर हलूं था असीं शॉर्टकट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक में त सभु लिसनर्स ऐं गॾिजी हूंदमि साॻे प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में। तेसिताईं ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-00-3-8-5-6-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राबते जे लाइ 0320180003।

वेलकम बैक सामिन, तव्हांखे सॉन्ग तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। ऐं ॿुधी रहिया GFM नेटवर्क। हुन सां गॾु असां सभई जेके बि टोटल असांजूं समरी स्टेशन आहिनि उहे बि असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि। सखर, लड़कणा, मीरपुर खास, मातली, ऐं हुन खां अलावा नवाबशाह, जामशरो, नौशहरो, फ़िरोज़। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि अव्हां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे मोरो जे लाइव स्टूडियो मां। ऐं हुन सां गॾु जी माया तव्हांजी पंहिंजी होस्ट RJ लीला सुमरो। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो ई आसान सवलो तरीक़ो आहे, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां थी, नोट कयो। पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज वारे ऑप्शन में वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर जो नालो लिखी 881 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। हलूं था असीं मैसेजनि तरफ़, जेके असांजे मैसेज पैनल ते मौजूदु आहिनि, तन मैसेजनि खे बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं। सिटी हालाणे खां जन असांखे मैसेज आयो आहे, सिस्टर मिशाल, माशाल्लाह तव्हांजो प्रोग्राम तमामु घणो प्यारो ऐं ख़ूबसूरत हली रहियो आहे, ऐं उर्स रिंजंदड़ असांखे मतिलबु फरमाइश कई आहे त चवनि था त मुनवर मोलाइका सॉन्ग सुनबो में। मुनवर मोलाई जे आवाज़ में चवंदा त असां तो लाइ घेर आहियूं, वञी पूरा ॾे वधीक त तव्हां छा लिखियो, हाज़िर आऊं, कोशिशि कयां थी, ऐं तव्हांजी फरमाइश ज़रूरु सॉन्ग पूरो कंदमि, ऐं तव्हांखे आऊं पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी। मोरो शहर खां जन असांखे मैसेज कयो आहे, लांगा अमानुल्ला, फैज़ुल्ला, ज़ईफ़ुल्ला ऐं मोहम्मद बख़्श असांजे प्रोग्राम में शामिल आहिनि। तव्हां सभु ॾिसंदासीं की आऊं पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी, ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो ऐं आसान सवलो तरीक़ो मां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाए छॾी, मूंखे वरी आऊं ॿुधाईंदे हलां थी, नोट कयो, पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज ऑप्शन वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं बि सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नाले लिखी प्लेटफॉर्म ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। ॾिसंदासीं तमामु घणो ख़ूबसूरत ऐं प्यारो सॉन्ग आहे, राति गुज़र जाएगी अफ़साना, कंहिं ते अचो त सॉन्ग खे गॾु इंजॉय कंदा हलूं था।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

वेलकम बैक सामिन, उन तमाम के तमाम घणो सॉन्ग पसंद आयो होंदो। असा तो लाइ गेर आयो वनी प्यार दे पेंजन के वाकई हकीकत आ। हिकड़ी ॻाल्हि मूंखे सम्झ नथी अचे त जीअं आऊं हिते आई आहियां थी आहियां त जेके मुंहिंजा प्यारा लिसनर्स आहिनि उहे सभई भला मूंखां वधीक वठिया पिया आहियो। मतिलबु मूंखां वधीक उहे दर्दीला सॉन्ग तमामु घणा ॿुधनि था। जेकी बि लिसनर्स मूंखे मिलनि, जिन्हनि बि मूंखे फरमाइश कई आहे अॼु ॾींहुं ताईं, मतिलबु अॼु माशाल्लाह मूंखे टियों चोथों महीनो आहे त जीअं हिते जॉइनिंग कई आहे, त मूंखे जेके मुंहिंजा प्यारा लिसनर सभिनी मतिलबु इन ई सॉन्ग जी फरमाइश कई आहे। मतिलबु तमामु घणा टफ टफ ॾुख वारा गाना। बाबा मूंखां वधीक तव्हां सफ़ा सड़िया पिया आहियो छा? ऐं ख़ासि करे राति जो अहिड़ा गमकीन गाना न ॿुधाईंदा कयो। राति जो पोइ महबूब निंड में अचे त पोइ ख़्वाब में त पोइ बाबा रोई ॾियूं त पोइ सिक बि लॻे थी न इंसान खे त।

प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो आसान ऐं सवलो तरीक़ो आहे। ऐं तव्हांखे पहिरियां ॿुधाए चुकी हुयमि, हिकु दफ़ो वरी ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे हले थी, नोट कयो। पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज वारे ऑप्शन वञो, एम आर लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं सॉन्ग फरमाइश कयो, कंहिंजे नाले डेडिकेट, पंहिंजे घोट या पंहिंजे नाले लिखित प्ले बटन ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। खूबसूरत आवाज़ आहे मुमताज़ मोलाई जी ऐं ज़ाहिद मक्सी जे आवाज़ में। राति पीरीअ खे रहायो, मथां वरी हलियो वञे इंसान आहे, सुबुह वरी थिए त हलियो वञे, इन जे करे राति पीरीअ खे रहायो, सुबुह मानी खाए पोइ पंहिंजे घर वञे। त अचो हिन सॉन्ग खे गॾु इंजॉय कंदा हलूं था।

सही ॻाल्हि आहे, राति जो पिरी रहे थी सघे इंसान आहे, ॻोठ ऐं झंग में पिरी ईंदा आहिनि घुमण फिरण, वरी उते धाड़ेल वग़ैरह बि हूंदा आहिनि, ख़तरा हूंदा आहिनि, इन जे करे राति पिरीअ खे हमेशह हराईंदा कयो। त लिसनर सिंगर मूंखे ॾींदा इजाज़त, वरी

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बाकी तमाम पखंड के मुकाबले में एक जबरदस्त रॉयल इन्वर्टर था।

0: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
1: लागू थी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वाली रियायत खत्म करने जो मुतालबो करे छो। तालीमी सामान वधिक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियन जो चवण आहे त हुकूमत IMF जी मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फैसलो कयो आहे। पहिरीं जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फैसलो कयो आहे। वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी करण जो फ़ैसिलो। कराची जे समूरनि घिटियुनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाकी बजट जी दस्तावेज़नि मूजिब कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1,98 करोड़ रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जी मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जी मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़। लांडी, ज़मान टाउन ऐं कोरंगी टाउन जी मनसूबनि लाइ बि 35 करोड़ रखिया वेंदा। कोरंगी ऐं मलीर ज़िले जी मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारी तजवीज़ बि बजट में शामिल। कराचीअ में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर जी क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्चर एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। कराचीअ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जी क़याम लाइ बि 5 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ वापारी अदालतुनि जी क़याम लाइ क़ानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसवदे जी तयारी लाइ कमेटी क़ाइमु। क़ानून वारे वज़ीर

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।